0: nga shiwe ho me shiwe kheta pe ko yo lo te ma ga te ge nga ri ma sha te po tha kha te kha kho lo a sha la ma jo lo khe sha la ti ga cha hu we je ke lo sha la chi yo automatic ki yo lo ga kha ya yo ku ma pi pu ja yo shiwe ti te we te lo te ha khe ga lo khe kha ya we ti mi kho lo kho te khe lo la lo khe pha ka le cha te pha ga su cha kai wo cha kai lo je कदे लो खाया चिविते पा हो गमा मोजो खहा गमा मोजो पतो अथोमाले ना ओ खहा गमो कोको तेला जो हाय खाशु यो हे कोपिले यो विशाला जाथुला विजे तेले शाला छिगा जानिमितिया हो गा यो मा मोजो तेगा थे पतो यो गा वो तो निशिले ए चिवो तिचिमाय ने हमिया था छो खो पातेगा मो कोको खनु ते जुलाले Dimi kho no we cha shi cha kho shu cha la yo te ko ma we te te ko sha la te ga ho ma mo jo pa to ho ku ha ga mo ko ko ku no te zhe le cha shi cha kho cha la we te ho le kha ya tha po ma we te le te ko ma we sha la te pa ga ma shi yo cha ko sha ta ko ma ko ga we le te ko ma pu we ko ga pu we khe ta te ho we te po tha a दो त्री तो वे ओ मो कोलो ती थे ले लु मु वे लाइ जे वे ते ले ओ ख्या ला का इ खो का वे ते मु जो वे जे ओ मो वे कोलो ते तो का मु पा ते या जो वे अ यो का ले लो शो आ शो यो वे यो मो मु ले तो आ ला को यो का ते तो का यो ले मो को मु आ ले ओ खे अ यो का मु पु वे खे ते ले ओ खे ते के आ ला का ते वे जे क ते ले ओ ते नि गा ले ओ ओ मो वे ज़्यादा भी यो हो दिया चो, नो है ज़्यादा टू मूवे माको, आ बेम मूवे माको, डिटेल मूवे माको, दो दो दो वे, को दो वे ते पामाको, अशियो डिटेल वे का, ए दिया दिया ना वो सोलो ते माला ते हो दिया वे दिया, ते कच्चो मूव पाची तो मा तो जे, अलगो यो के मा बुब बुए का, शुवे, ओ गालो हुआ ले शु, डिटेल ले क पुआ रे खेते ले हुआ रे पतो यो तेगा ते कोमु जाथा मु मा पुई वे था पतो तो हा जा ले अ यो ख यो को ते जानी पे के से फोन आ जा मा पुई रो जा को पुआ ते मा को ले खे पुई वे खे पुई वे ओ खो छे जो लो मा पुई को मा पुई खे छे जो वे सी वे को सी वे खे छे जो वे लो था अल्लाह छि ते पा नि था ना हे यु तु जे खे जा वे यो आशु यो तो अलो चेती ता दो नि शु अलो था का दो नि पी को वे अलो ते पो था खा ते खा खो लो छते जा जो वे जे ते नि गा ले ओ इस कै रे ओ पा चेती जो ता वे से को ये का चो खो लो या पा नि गा जो ता वे यो जे ओ पा ची का मो ला ले सो ला पा नि गा वे ती या पा नि गा था कु ते ता ले कु ती वे या पा नि गा ओ अपा का सो ला पा नि यो अपा सोए खो नो को नुई ने तपा तागु दामे ती ये खो चे ती छे कते लो तीमी का ती पी ती चो वे पा तो तीमी का तपे दामे ती ये मुझा खे पुले ओ पा ची या नी गा था तो मा पी तावे ती नी गा ले ओ पा ची का सो काई वे जे ओ पा सो काई खो नो ओ वी ओ नी ची तीमी था ती ये ती जा ले ती ये खो ती छे वे या खाओ या गला था वे पा चिटी गा ये का जा चो वे पा तो ले अमी मा हे लो के यो ये यो ता के शिवे यो ओ याओ वे को लो ओ पा को पिया वे खा शु ती मी ते गे ती क्या वे ला वे चा शिते पा गा खमे पे दा वे जे ओ वे ओ नी कते ले ओ ओ नी पा को ओ पा वे ये का छिया वे ओ वे पा को ये ता तो ले यो ये यो ती छे का वे खा ते जी लो कते ले अभी पाची यो तो नी वे आ ना नी पा मी मा का मा चोशे चोशे का मा पे दा वे चो मा चो लो ना नी पा चो के वा का दे हु ले गा के ले मी मा को हु चोशे वे चा पा तो यो आ जी मा पी चो लो ओके दो वे जी अभी पाची के हो नी पा गा जा ले को दो नी वे आ ना भी पाची ना चोशे का मा पी ला चो मा चो यो के नी गा गा वे नी मो ओ गा वे गा के मा यो चा चो वे यो हु चो वे OK, dog out of jail, you patching. Cadillac, Jajee, look at it, just she did too. 你以为了要为爸爸家庭也好，我为爸妈心思在的了，家人够大比为紧。他说我为爸爸，那你爸爸那给妈妈叫比较的作为爸爸有个，这是对土高你不了，你爸妈土比别的了，你爸爸家庭也好，家人够大比为紧。这个地位要靠老表你去，家庭也就考虑了这些年他。这土你都有个，这土都老了。他他的口罩拉了个毛衣巴托阿托马蒂里那多你切为这你要要的那为这些叫你都有个起码你都有个起码叫那些 OK 多个可是第二个呢我你把这些不为了为把这些业务叫规定我为把这些都不了你把这些业务这些叫不规定他他高级了你要要铺大些为这我为把那好个地里不了你把那你比他阿威爸那位家姐了家是家不给的位或者那个你爸个阿威爸那你比如说你那好个地嘞过来那个那位家姐了家是家不给了地位弄个阿姐比拉妈个了阿爹个地个他们比拉个嘛交到嘞或者阿威爸过来阿威爸那比拉妈交了得到钱位弄去阿咪妈妈就是嘞话乌拉乌了去阿咪妈去交到位后来后大到了位置你要要多看好大概率下巴多比如你第二好了第二多你的不为他要么为第二第二他第二不不大大的好大位置最后机会了也好好路对第二不第二多你的不为巴多的还得多想概率把他们到了位呢最后我们大家可以有度就为他要么为哟
1: 妈是为了过妈是为